बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

5:03 स्टूडियो के घड़ी में वक्त मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। और आज आप सबके लिए मैं नॉन स्टॉप गपशप में किस विषय पर बात करेंगे वो तो बताएंगे, साथ में बहुत सारे प्यारे प्यारे रंग में लेके आई हूँ। तो पहला ट्रैक जो है बिल्कुल तैयार, सुनते हैं कमाल शानू और शारदा सरगम की आवाज़ में इस गीत को, सुनते सुनते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो है बाकी बातें गीत के बाद क्यों

10:10 के 11 मिनट स्टूडियो के घर में वक्त आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप। आज है 26 अगस्त और आज है फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर का जन्मदिन। तो हमारी तरफ से मधुर भंडारकर के जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारा जो है शुभकामनाएं। साथ में मधुर भंडारकर की अगर बात करें हिंदी फिल्म सिनेमा में तो फिल्मकारों में गिने जाने वैसे वो फिल्मकार हैं जिन्हें ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी जिंदगी को कैमरे के सामने लाने की कोशिश की है। उनकी फिल्मों में समाज संघर्ष, महत्वाकांक्षा और रिश्तों की जटिलता दिखाई देती है। चांदनी बार, पेज थ्री, फैशन, हीरोइन जैसी कई फिल्में उन्होंने की हैं जिसके जरिए वो उन्होंने अलग अलग पेशों से जुड़ी दुनिया को उन पहलुओं को दिखाया है जिन पर आम तौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। उनकी फिल्म चांदनी बार में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई और उनके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इस फिल्म के लिए।

कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आन मेन एट वर्क फिल्म से सुना आपने इस गीत को। और इस फिल्म को भी जो है मधुर भंडारकर ने ही बनाया था। ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने हमें जो है बहुत सी दुनिया की रियलिटी बताई। ऐसे ही एक फिल्म फैशन

मधुर भंडारकर की फिल्मों की खासियत ये रही कि कहानी में मनोरंजन के साथ साथ समाज का आईना भी दिखता है। तो आज नॉनस्टॉप गपशप में हमारी फिल्मी गपशप का एक हिस्सा मधुर भंडारकर के लिए, सुनते हैं अगला गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल सी विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 10:32 स्टूडियो की घड़ी में वक्त बैक टू बैक दो गीत सुने आपने फैशन और हीरोइन से, और अब वक्त है नॉनस्टॉप गपशप में एक चुटकी नुस्खे की।
1: एक चुटकी नुस्खे

नुस्खे में आज मैं कुछ खास नहीं बताने वाली, बस इतना बताऊंगी कि अगर आप सुबह उठकर सीधे अपने मोबाइल को हाथ में ना ले, बस दो मिनट अपने लिए थोड़ा सा निकाले, एक ग्लास पानी पी ले, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए और मन में कहिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आज सब कुछ सही होगा, जो मैं चाहता हूँ बस मुझे मिल जाएगा। अपने से ये दो मीठे बोल बोल कर देखिए, कई बार दवा से ज़्यादा असरदार होती है अपने आप से की गई ये छोटी सी प्यारी सी बातचीत। दोस्तों, आज की हमारी एक चुटके नुस्खे में एक और छोटा सा नुस्खा ये कि अगर कभी मूड अच्छा ना हो तो किसी अपने से जो आपका करीबी है और उम्र थोड़ी छोटी है उसकी, मतलब 4-5 साल का, 6-7 साल तक के बच्चे से थोड़ा बात कर लीजिए या किसी बुजुर्ग

बुजुर्ग से जो 60-65 के ऊपर है उनसे थोड़ा बात कर लीजिए, देखिएगा आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप जो है तुरंत में अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है भूल जाएंगे और जो है आप में नई ऊर्जा भर जाएगी। अगर आप किसी बच्चे से बात करते हैं आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फील करेंगे, अगर आप किसी बुजुर्ग से बात करते हैं तो दिन हल्का हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा और साथ में जो है सब कुछ अच्छा लगने लगेगा।

अब एक जरूरी घोषणा। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल एवं अध्यक्षता के दिनांक 22/9/2026 को प्रवाह 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगदान भवन योगायोग भवन P36 सीआर एवेन्यू कोलकाता 7001-2 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत योजना आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या विभिन्न डाक प्राधिकारियों के पूर्व प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 सीआर एवेन्यू कोलकाता 7001-2 के नाम से भेजी जाए और यह डाक जो है ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वो उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष 0332120250 0332120612 0332120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों में ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना होगा। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार एवं आदि से संबंधित विविध मामलों की एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। घोषणा समाप्त हुई।

0: Pode que bem.
1: दोस्तों आज का दिन वैसे बहुत खास है क्योंकि आज जो है इतिहास के पन्नों में अगर हम रुक करेंगे तो मदर टेरेसा का जन्मदिन था आज के दिन। आज के दिन उन्होंने दुनिया में आई थी और आज उनकी याद करके उन्हें हम सब एक प्रॉमिस खुद से कर सकते हैं कि जितना हो सके हम जो है दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जो किया, जितना किया, वो आज भी हम सबके दिल में बिल्कुल है।

मदर टेरेसा को जो है उनके मानवता के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवता की प्रतीक मदर टेरेसा का आज ही के दिन जन्म हुआ था।

0: और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमें किसी का किसी की सहायता करने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल हर मौसम, हर मुसीबत से पार, हर मैदान को फतह कर हमें दूसरे की मदद करनी ही चाहिए।
1: कर हर मैदान।

0: नॉनस्टॉप गपशप में सुना आपने आज का दिन, और अब वक्त हो गया है कि मैं कहूँ आप सबको टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए, साथ रहिए 107 AIR FM ट्रेन, बहुत दिल से दिल तक, और कार्यक्रम यूं ही चलते रहेंगे, साथ में गाने बजते रहेंगे और आप सब मुस्कुराते रहिए। इसी नोट के साथ आज कहूँगी मैं शुजिश्विता आप सबको टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए, साथ रहिए।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, FM रेनबो पर।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। दिल की धड़कनों की रफ्तार जरा बढ़ा लीजिए, क्यों? क्योंकि घड़ी की सुइयां गवाही दे रही है कि वक्त हो चुका है आपके सबसे पसंदीदा शो यानी कि कार्यक्रम तीन का तड़का का। और यहाँ लगेगा बातों का, गानों का और अनगिनत जज्बातों का जबरदस्त तड़का, यानी कि मजा तीन गुना और मस्ती बेहिसाब। और जब जिंदगी की रसोई में अगर तड़का सही ना लगे तो मजा फीका पड़ जाता है। और जब बात दिल के मामलों की हो तो इश्क से बड़ा कोई जायका नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति, लेकर कार्यक्रम तीन का तड़का सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। दोस्तों, कुछ रिश्ते किसी मुकम्मल किताब जैसे नहीं होते, बस हवा के एक झोंके की तरह आते हैं और जिंदगी की सबसे हसीन दास्तां बन जाते हैं, जहां अल्फाज कम और आंखों की खामोशियां ज्यादा बातें करती है। एक ऐसी ही दास्तां जो शायद आपकी भी है और मेरी भी, और शायद हर उस दिल के जिसने कभी किसी को टूट कर चाहा हो। तो चलिए, आज के इस तड़के में सबसे पहले घोलते हैं मोहब्बत का सबसे खास रंग। और जब बात, जी हाँ, प्यार की हो तो तेवर थोड़े से सख्त होते हैं, और लेकिन जब दिल का मामला हो तो अंदाज बेहद नर्म और रूहानी हो जाता है। तो तैयार हो जाइए खो जाने के लिए। फिल्म गब्बर इज बैक के इस बेहद खूबसूरत और दिलकश तराने में पेश है गीत तेरी मेरी कहानी, अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में आप सभी के लिए।

137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आवश्यक सूचना। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg-wb@indiapostpost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapostpost.gov.in इन ईमेल आईडी के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निर्देशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212061 या फिर 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति

0: तो चलिए दोस्तों, आज परियोजना प्रस्तुति में आज हम बातें करेंगे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के विषय में। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना है जिसके विषय में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, जीवन अनमोल है लेकिन जीवन अनिश्चित भी। किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है घर का कमाने वाला व्यक्ति। अगर किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। ऐसे ही संकट के समय परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 9 मई सन 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह योजना खास तौर पर आम नागरिकों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और इस योजना की मुख्य विशेषताएं यह है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसके परिवार या नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। और यह बीमा सुरक्षा पूरे 1 वर्ष के लिए होती है और हर साल स्वतः नवीनीकरण किया जा सकता है। और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसका कम प्रीमियम। इसमें केवल 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम देना होता है जो सीधे बैंक खाते से स्वतः कट जाता है, यानी साल भर की सुरक्षा वो भी बहुत कम खर्च में। और इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो और जिनका बैंक खाता हो। बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि बीमा राशि और प्रीमियम दोनों बैंक के माध्यम से ही संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को किसी भी सरकारी या निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जनधन खाते के माध्यम से लिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बैंक जाकर या बैंक की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इस योजना से जुड़ा जा सकता है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं है बल्कि देश के हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि किसी परिवार को अचानक आई विपत्ति के कारण आर्थिक रूप से टूटना ना पड़े। और आज के समय में जब जीवन में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है तो ऐसे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आती है। और यह योजना गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है तो अवश्य इस योजना से जुड़े और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें। तो दोस्तों, आज हमने परियोजना प्रस्तुति में जाना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के विषय में।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का।

तो इसी खूबसूरत धुन के साथ वक्त का पहिया इतनी तेजी से घुमा कि पता ही नहीं चला कि आज के तीन के तड़के का यह शानदार सफर अब अपने मुकाम पर आ पहुंचा है। तो दोस्तों, बातों की मिठास, धुनों की मस्ती और आपके बेशकीमती साथ ने आज के दिन को वाकई यादगार बना दिया। तो दोस्तों, याद रखिए, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस पन्ने पलटते हैं और नए तराने जुड़ते जाते हैं। तो दोस्तों, अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं ठीक आप सभी से मिलने आऊंगी 7:02 पे, जी हाँ, कार्यक्रम छायालोक लेकर इसी जगह पर, तो ज्यादा जोश और एक नए जायके के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी जिंदगी की धुन को कभी मध्यम मत पड़ने दीजिए। इसी आशा के साथ एक मधुर तराना आप सभी के लिए मैं छोड़े जा रही हूँ श्रेया घोषाल की आवाज में, लेकिन फिर आप 3:30 पर आप सुनेंगे हमारे एक स्पॉन्सर कार्यक्रम, जी हाँ, NCERT की ओर से। तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए, साथ रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
0: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सब प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
0: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
0: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
0: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गाँवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
0: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गाँव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
2: जी,
0: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिख

0: दिखाई देती हैं।
1: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
0: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
1: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: जी,
0: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
1: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं, वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
0: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
1: जी,
0: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
1: जी,
0: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
1: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
0: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
1: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल।
3: देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से

0: कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी।
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन

0: जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नील गाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुआं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी, हाँ, हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
6: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
6: हाँ, ठीक है, ठीक है,
5: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, हम तैयार हैं, ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
8: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
9: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
10: वो कैसे?
11: क्या गड्ढा बनाना है?
12: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
10: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ बताओ।
12: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
11: हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
12: सिंचाई टैंक,
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी का

0: हद तक दूर हो सकेगी।
1: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
2: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
3: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छह लोग के सेगमेंट हम साथ साथ है में। जी बिल्कुल, और दोस्तों मैं हूँ आज आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ही पता है कि संगीत बहुत ही खूबसूरत होती है, यही कि इसकी बात भी इतनी खूबसूरत होती है कि हर मूड का साथी बन जाता है, चाहे दिल खुश हो या थोड़ा शांत, एक सही धुन पूरा माहौल बदल देती है। तो चलिए दोस्तों, सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारे से मधुर तराने।

तो दोस्तों अगर 90 की दशक की बात करें तो क्या दौर था, वो भी कमाल का। कहते हैं सादगी और मासूमियत का अपना ही अलग जादू होता है, और जब ये जादू 90 की म्यूजिक में घुल जाए तो बात ही क्या। तो चलिए दोस्तों, अक्षय कुमार और ममता कुलकर्णी की इस खूबसूरत जुगलबंदी को याद करते हैं। पेश है आपके लिए फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का ये एक बेहद प्यारा नगमा।

तो दोस्तों जिंदगी हम सभी को कभी ना किसी के लिए नायक होते हैं और ना ही तो कभी कभी हम अपनी शरारतों और गलतियों की वजह से थोड़े खलनायक भी बन जाते हैं। लेकिन असली मजा तो इस बात में है कि हम जैसे भी हैं हमारे अपने फिर भी हमारे साथ साथ रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस कार्यक्रम के जैसे यानी कि छह लोग के सेगमेंट हम

तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 7:26 और 8 सेकेंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छियालो के सेगमेंट हम साथ साथ है अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों बातों और गीतों का ये सिलसिला चलने वाला है ठीक शाम रात के 8 बजे तक। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए इस कार्यक्रम में अपनी दोस्त ज्योति के साथ। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है, आज इस कार्यक्रम में सबसे खास बात क्या है पता है कि आज कोई ना ही तय टॉपिक ही नहीं है और ना ही कोई दायरा है और ना ही कोई नियम, क्योंकि आज की महफिल और सिर्फ और सिर्फ आपके मूड और बेहतरीन संगीत के नाम है। तो बस रेडियो की आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और सुरों का ये खुला सफ़र और इस प्यारे से मधुर तराने के साथ करते रहें। वैसे दोस्तों, जो अगले गीत है वो मैं सुनाने वाली हूँ, जी बिल्कुल, कि जब हम अपने का साथ होता है ना, तो छोटी छोटी नोक झोंक और दिल की जो मीठी शरारतें हैं खुद ब खुद रिश्तों को और गहरा बना देती है। और प्यार में ये जो दिल चुराने की शिकायतें होती है, यही तो साथ को हमेशा तरोताज़ा रखती है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम चालक के सेगमेंट हम साथ साथ में अब वक्त हो चला है एक बेहद ही प्यारी और मेलोडियस धुन में खो जाने का। जी हाँ, फिल्म करीब से ये प्यारा सा सदाबहार नगमा आप सभी के लिए।

में खो जाते हैं तो फिर कोई दूरी कोई दीवार मायने नहीं रखती। और दोस्तों हम साथ साथ का असली मतलब तो यही है कि हालात चाहे जैसे भी हो हाथ हमेशा एक दूसरे के हाथ में रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू के सफर को ले चलते हैं 90 के दशक के उस जादुई दौर में जब ए आर रहमान साहब के म्यूजिक ने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। जी हाँ उनकी क्लासिक फिल्म कॉम्बैट जिसमें एक रूहानी आवाज़ एक गीत के द्वारा जो साथ ही साथ दोस्तों ये एवरग्रीन और दिल को छू लेने वाला नगमा है। तो चलिए दोस्तों फिल्म बॉम्बे के इस गीत को सुनते हैं।

तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला 7:49 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छियालो के सेगमेंट हम साथ साथ हैं और मैं हूँ आज आपके साथ आपके अपनी होस्ट है दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों बातों और ये गीतों का सिलसिला रात के ठीक 8 बजे तक होने वाला है और ठीक 8:02 से आपके साथ जुड़ जाएगी जी हाँ हमारी अगली प्रस्तोता यानी हमारी अगली अनाउंसर पूनम सिंह। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं एक और मधुर तराने को क्यों न सुन लिया जाए।

बिल्कुल दोस्तों, मैं भी बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन क्या करूं। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब आज के सुरीले सफर को यहीं पर विराम देने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, पिछले एक घंटे में वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। आज के इस खुले सफर में ना कोई दायरा था, ना कोई बंदिशें, बस शुरू का एक खूबसूरत कारवा था और आपका बेपनाह साथ। तो दोस्तों, वो आपका साथी है जो हमारे इस कार्यक्रम की असली जान है। दिल से शुक्रिया आप सभी का इस महफिल को इतना खास और इतना यादगार बनाने के लिए। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी खुद के लिए और अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए। रिश्ते और यादें बिल्कुल इन गानों की तरह होते हैं, जब तक इनमें अपनापन और मिठास की धुन बजती रहे जिंदगी खूबसूरत लगती है। हालात जैसे भी हो, बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम साथ साथ हैं। एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखिए और थोड़ी सी खुशियां अपने आसपास बांटते रहिए। तो दोस्तों, अब आपके इस हम सफर को यानी कि अपनी दोस्त को दीजिए आज के लिए इजाजत, लेकिन ये अलविदा सिर्फ आज के लिए। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे जल्द ही, फिर से नए समय, नए नगमे और नई यादों और ढेर सारी अच्छी बातों के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना मनपसंद रेडियो चैनल यानी कि 107 FM रेनबो। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, और आप सभी के दिन और रात बेहद ही खूबसूरत हो। इसी आशा के साथ मैं आपकी दोस्त आप सभी से लेती हूँ इजाजत और जाते जाते एक मधुर तराना आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ।

8:07 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक, और हमारा ये साथ बना रहेगा अगले 9 बजे तक। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और बहुत ही खूबसूरत नगमों का लुफ्त उठाइए, सुनते रहिए, साथ रहिए। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हम उसके बारे में कुछ प्लानिंग करके नहीं रखते, और ऐसे में फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब क्या है ना कि हमेशा जीवन में सब कुछ प्लानिंग से ही हो ये ज़रूरी तो नहीं, लेकिन जब हम हमेशा प्लानिंग से ही हमें जीवन जीने की आदत पड़ जाती है ना, तो बिना प्लान के हम जी नहीं पाते हैं। बातें और भी हैं, होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:14 और ये जो आपने खूबसूरत नगमा सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बचना ए हसीनों से। अभी क्या है कि हर इंसान जो भी है हर कोई चाहता है कि वो जीवन में सफल हो जाए, लेकिन आखिर सफल हो कैसे, कैसे सक्सेस मिले? तो सबसे पहली बात तो ये कि जीवन में सफल होने के लिए कोई एक शॉर्टकट नहीं होता है, बल्कि लगातार की जाने वाली मेहनत, सही दिशा और अच्छी आदतों का परिणाम होता है क्या, सफलता। और लगातार अगर कोई सफल होना चाहता है तो उसे कुछ कुछ चीजों को अपने जीवन में शामिल करने की जरूरत है। सबसे पहला क्या, सेट क्लियर गोल्स, यानी कि अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह तय करना है कि जीवन में असल में हम करना क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, छोटे और बड़े जो भी, जैसे भी, जो भी पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पहले बनाएं, सोचें, उसे एक डायरी में लिखकर रखें ताकि हमें सही डायरेक्शन में जाने के लिए अंदर से एक ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती रहे। फिलहाल 8:15 बातें और भी हैं, होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले यह खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:21। और थोड़ी देर पहले मैं बातें कर रही थी इस बारे में कि हम में से हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन शॉर्टकट इसका कुछ नहीं होता है। इसलिए ऐसा क्या करें कि बस हमने जो सोचा अपने लिए, जिस लक्ष्य का निर्धारण किया, जिस मंजिल को पाना चाहा, उसे हमने हासिल किया। तो इसके लिए प्लानिंग और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से तो सफलता कभी नहीं मिलती है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए एक रूटीन बनाने की ज़रूरत होती है, और डिसिप्लिन के साथ तो उस पर अमल भी करना होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। यानी कि लगातार अगर हम एक काम के पीछे लगे रहें तो सफलता हासिल की जा सकती है। फिलहाल 8:22 बातें और भी हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:34 और थोड़ी देर पहले मैं आप सबसे बातें कर रही थी कि जीवन में सक्सेसफुल अगर होना है तो फिर ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करने की जरूरत है। तो प्लानिंग की बात हो गई, डिसिप्लिन की बात

बात हो गई और क्लियर गोल्स की बात हो गई, अब बारी है टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ, समय सबसे मूल्यवान माना जाता है, बहुत कीमती माना जाता है। और अपने दिन भर के कामों को अगर हम इस हिसाब से बांटें कि कौन सा पहले करना ज़रूरी है, जैसे ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसे करके, तो इससे क्या होगा ना कि बहुत सारा टाइम बर्बाद होने से बच जाएगा और जो टाइम बच जाएगा उसे हम सही जगह इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये हुई ना बात टाइम मैनेजमेंट की। और अब टाइम मैनेजमेंट की बात जब हो ही गई है तो सही टाइम पर सही गाना तो बनता है ना। तो सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथियों ही बने रहिए।

7:44 ओम शांति ओम। जी हाँ, ये जीवन में ये स्थिति कब आ जाती है जब हम अपने लिए जो लक्ष्य तय करते हैं, जो मंजिल पाना चाहते हैं, उसे

पा लेते हैं, तो बस वो ओम शांति वाली फीलिंग आ जाती है। और इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार सीखते रहें, खुद को हमेशा अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। नए स्किल्स, अच्छी किताबें और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई नई चीज़ें सीखते रहना। तो असफलता से घबराने की बजाय अगर उससे सीख ली जाए तो फिर सफलता बहुत करीब आ जाती है। फिलहाल 8:45 और वक्त एक और खूबसूरत नगमे का, सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:55 और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,